0: हाय, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा।
1: उस इंतजार से क्या गिला जो तेरे दीदार पे खत्म हो।
0: अभी तो आपको कोई शिकायत नहीं।
1: ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ। आप होना चाहते हैं बेवफा, हो जाइए। आपके कदमों पर लाकर रखती है दिलो जान, मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए।
0: लाइट चले गई, मैं चलता हूँ।
1: नेवर माइंड, आ जाएगी। इन चिरागों के बुझ जाने का गम ना कर, ये आंखें जलेंगी रात भर।
0: क्यों आग के साथ खेलना चाहती हो? जल जाओगी।
1: हम तो एक कतरा है मोम का, हमें खुद में शामिल कर लो, आग बना दो। अपनी सांसों की गर्मी से हमारे जिस्म को भर दो, हमें रूह तक चला दो। इस कदर बरसो आज हम पर, हमारी परसों की प्यास बुझा दो।

My pals, my buddies, my friends, today we've all graduated. पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है. आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहां होंगे. I'm really sad this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you. We'll really miss you, Miss Jaitley.

आपने हमें हिंदी सिखाई हंसते हंसते। अरे धन्यवाद आपका, अच्छे अंक देके आपने हमें बचाया हंसते हंसते। हे थैंक यू।

मेरा दिल कह रहा है, मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है, मैं तेरे सुर्ख लरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है, तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों की चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है, तेरे उलझे गेसु सवार इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारो, इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दूं।